जति सती संतोखी। गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहन या मन मोहन सुरग मछ पाया ले। गावन तुदनो रतन उपा

सदगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोह कौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राउ। हर जन केवड भाग वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिला त्रपतास है मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वै उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतो पाई तां कारिज का गै कर तरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया राउ। जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काहे मन पहु करिया।

तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज बिड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अभर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है तुद जी जन नानक दिन कुरबाना

की भासी। जन निर्भौ जन हर निर्भौ त्याया जी, जन का भौ सब गवासी। जन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जन हर त्याया जी, जन नानक तन बल जासी।

अखट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सरज सब गोई।

पड़कुय वर न त्याऊं, जो बर चाहो सुतम दे पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चौन चौन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे।

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सरी असबान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै।

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मन पाया सतगुर तां पाया सहज सेधी मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो दांगा वो हरि के रामन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं।

सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी।

0: प्रगटियो जोत सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निह चल कर बाधेओ गुर कीओ बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहला राग गोड़ी दी की माला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गए कर कीर्ता किए करते गावे विचारो तित कर गावो सोहिला सिगरे सृजन हारू तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला हूँ और यत सोहिला सदा सुख होय राहु नैत नैत जीअड़े संभाली आनंद देखेगा देवन हारू तेरे दान कीमत न पवे तिस दाते गवन कुमार संबत शाह लिखया मिल कर पावो तेल देह सजना सीछड़िया जो वह सब चमेल कर कर पहुंचा सड़े।

0: तेरी कृपा दे नाल पिंगला पहाड़ चढ़े डूंगा दस गीता दे ज्ञान नूं
1: जन्म मनुख किवें सफला बनाइए भेद दस दे।

मैं जुगाद गुरै नमै सतगुरै नमै श्री गुरुदेव नमै दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एहे बेनंती सुन प्रभ मेरे देहे नाम कर अपने छेरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुरु प्रसाद किने विरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण

तन सुखी होए अंत मिले गोपाल जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह राम नाम उर में गयो जां कै सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम उर में गयो जां कै सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए दर्श तुहारो होए दर्श तुहारो होए दर्श तुहारो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो तनासरी महला पंजवा जां कौ हर रंग लागो इस युग में सो कैयत है सूरा आत्म जिने सगल वस्तांक जान

चरणी पावन नाम त्यावन सहज सुमावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तोर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण वस है मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की

गुरु रहाओ जन के चरण वसै मेरे हीर है संग पुनीता देही। सतगुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप पूर्ण सतगुरु का है। जरा अर्थ ख्याल श्रवण कर लेने, भगती के दो मार्ग होंगे ने, एक निराकार भगती जिन्हों निर्गुण भगती कहते, एक सरगुण भगती। कबीर निर्गुण भगती के उपाशक रहे ने। निर्गुण भगती विच केवल शब्द ही गुरु के चरण हैं और शब्द की धुन जड़ी है ये गुरु का वजूद है जो साडे अंदर रहता है। जिन्होंने श्री गुरु नानक साहब का दर्शन किया उन्होंने लिए श्री गुरु नानक साहब महाराज का पावन स्वरूप अपने हिरदे में धारण करन और खुद मिटा दे अपनी हस्ती को अगर किस मर्तबा चाहे सतगुरां दे चरणां विच लीन हो जाओ। और जिहड़ा सिख सतगुरु दे चरण विच लीन हो जांदा है सतगुरु दी मेहर नाल उस बच्चे नूं अपनी गलबकड़ी विच लै के अपने हिरदे विच बिठा के एक मिक कर देंदे हन। ये दो प्रकार दा अर्थ कीता है विद्वान सज्जन नामदेव व्यासी नोट कर लैण। निराकार भगती विच केवल गुरमंत्र ही ध्यान योग है और गुरमंत्र दी तुहानू सुनना ही बंदगी है। जन के चरण वसै मेरे हीर है संग पुनीता देही। शब्द और शब्द तुन ये देही है, तुन देही है और शब्द गुरमंत्र जो सतगुरां ने बख्शे है। निराकार भगती विच निर्गुण की भगती विच जिहड़ी कठिन है, जिहड़ी सहज भगती है वह गुरु नानक हजूर की कृपा नाल है। सतगुरु नूं समर्पित हो जाओ, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पाओ केहा कड़ा जी। अपना आप खत्म कर लो, सतगुरु के चरणा विच अपने आप नूं रख देवो। चरणा च रखण की विधि है मन भी तेरा, तन भी तेरा। मन तन नाल संबंधित जो कुछ है सतगुरु जी ओ भी तेरा। इहदे विच कोई मनमत ना करनी, इस सतगुरु जी की श्रेष्ठ भगती है जिसका कोई अंत नहीं है। जे उसका अंत है तो समुद्र विच विलीनता है। ज्यों जाए जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट के गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के साथ कुर्बान। दसन द्वार तक जान लई जो दो अखां तो शुरू हुंदे दसन द्वार तालू दे थले है, इसका मुंह उपर पासे नूं है। जदों असी इस थां ते पहुंचदे हां साडी बिरती उलटदी है। उपर चरण तले आकाश, गुरु नानक साहिब जी दा वचन है। साडे पैर उपर हो जांदे ने, साडा सिर थले हो जांदा है। जिस तरह असी माता दे गर्भ दे विच सां उत्थे असी सिद्धे लटके होए सां, संसार विच आके असी पुठे हो गए, पैरां भार चलन लग पए, सिर मन मत करन लग पिया, दुबधा दी शिकार हो गए, शरीर विच बंद गए। इत्थे जाके निराकार भगती ते साकार भगती दोवें एक हो जांदे ने और जीव आत्मा विच रल के गंगा सागर दा रूप हो जांदी है। जदों गंगा सागर दा रूप हो जांदी है फिर गंगा नहीं रह जांदी। इस तरह जदों सिख सतगुरु विच लीन हो जांदा है फिर एक गुर सिख हो जांदा, फिर एक गुरमुख हो जांदा, फिर एक सनमुख हो जांदा, फिर एक हजूरिया हो जांदा, फिर एक गुरु दा प्यारा हो जांदा, गुरु रूप खालसा हो जांदा। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जन की तोर दे हो कृपा निद, नानक कै सुख एही। पातशाह तेरा जड़ा उस रूप है ना भगती कराउन वाला, मैं उसकी संगत विच रहा, उसकी याद विच रहा। भाव मेरी अरदास है नानक एक करे अरदास,
ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਨ ਵਾਣੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਚਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਤੋੜੀ ਦੇਣਾ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਹੇ ਅਸਵਾਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

दर्शन पेटत भूत निहाला, हर का नाम विचार है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औ

फेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर मेरो हर चरण सरण।

कहानी हो रो सोरठ महला पंजवा पै कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पै लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाए पलो सो मूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा।

गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल हाथी अगम अपार बिलख बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो

कलहारी सब कट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुशल खेम सब पया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ अंतर बाहर थाम परंतर जत तक देखो सोई नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन

मत कह न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा धारी। आठ पैर आराधो स्वामी, पूरन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख ले हो

महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूरन पुरख विधाता रहाओ आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला जय जयकार कहे जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला सूरठ महला पंजवा हमरी गणत ना गणिया ताई अपना बिर

मेरे प्यारे हरगोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत पाखिया सोरठ महला पंजवा पय कृपाल स्वामी मेरे तिथा के दरबार सतगुर ताप गवाया पाई।

फटकार, हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरी है पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ जिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरख सो पाई।

संतो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हमरा गुण अवगुणा बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सूरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपुरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे जो बारिक पित माता सूरठ महला पंजवा करती जा चौपदे इक्को अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं।

तेरा अब टूडन कतो न जाई, गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा, लबद अपनी पाई ता कट आवे कट जाए। कह सात न्याय निबेरा ऊहा समठा।

सहा गुर पेटत मन ओ महा सगल पराछत लाखे मिल साध संगत कैसा थे गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा गुर कीनो मुकत द्वारा

हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याये अनदिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी चितलाए उत्सत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सत्साखी विघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पाओ कत है नहीं प्रभ शरणा रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभु अवचल नीव उतारी बल

पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट उतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का पासा मन पूरन होई आसा जह पेखा तह सोई हर प्रभ बिन अवर न कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाते निर्भव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठाड पाई कर

जप नानक नाम सत साखी, अपने दास की तैज राखी। सूरठ महला पंजवा, विच करता पुरख खलोआ, वाल न विंगा होआ, मज्जन गुर आंदा राते, जप हर हर किल

ध्याए संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे मरे न आवे जाई हर हर नाम ते आई एहो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल हुए भगवाने बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर हर नाम समारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की पूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया हर दर्शन

पंजवा गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाये ता सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाय रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत करनी ने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहन

जवा गुरपुर कीती पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार दम विटो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारे बिघन ना लागे तिल का कोई कारज सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत।

इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चर के पंख निहारो नैन नीर पर आयो हों पीत पयो है बीचो सुनत देश

ठाकुर सगरो दुख मिटायो, कहो नानक हौ मैं पीत गुर खोई, तौ दयार बीठ लो पायो। सब रहो अंधेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो, सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

पाए सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांसी बहुड़ पिता गल लावे पिछले औगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे

रखाये। अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये। ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे। गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले साथे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेशा। जब पौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुने प्रभ तू है।

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई। पार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी। सोरठ मैला पंजवा गुरपूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई रहाओ। करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, तोट न कतहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर

जन नानक एक से आया सर्व फला पुन पाया। सोरठ महला पंजवा करती जा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरे कीने दाना। सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे रहाओ साध संग मल्ला की पार ब्रह्म पयो साथी। नानक नाम से आया आद पुरख प्रभ पा।

पाया, गुर अपना हृदय से आया, अपने सतगुर की वडियाई, मन इच्छे फल पाई, संतो दिन दिन

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साच पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

जाती अनद करें तेरे दासा जब पूरन होई आसा। सोरठ मैला पंजवा गुर अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो तिस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वस्ती ने जन नानक ना।

सिख संत सब सर से होए हर हर नाम से आई रहाओ। जो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संतां देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवां सोई कराए

सहज रखाई, मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रत पालन लागा, करी तेरा कराया रहा।

या मन तन हर दर्श समावे, नानक दास सच्चे गुण गावे। सोरठ महला पंजवा, गुर मिल प्रभु चितारिया, कार्ज सब सवारिया,

शरण स्वामी जी जंत सब हाथ तिसै कह सो प्रभ अंतर जामी रहा। कर सब सब सवारे प्रभ अपना बिरद संवारे पतित पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लोड़ा गुरु उबारिया अनद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन

पूरन कल जिन तारी नानक सरणी आया मन चिंदिया फल पाया सोरठ महला पंजवा सदा सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आपे शीतला ठाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी।

राखा, हर सिमरत सब दुख लाथा। अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए। अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए। नामे की वडियाई, तिस कीमत कहन न जाई। संतो हर हर हर आराधो, हर आराध सबो किच पाये। कार्य सगले साधो रहा, प्रेम भगत प्रभ लागी। सो पाए जिस वड भागी, जन नानक नाम ते आया। तिन सर्व सुखा फल पाया, सोरठ महला पंजवा। परमेश्वर जिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना। परमेश्वर जिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संतो सुख हुआ सब ताई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर। रव रहा सब नी जाई रहाओ, तुर की बाणी आई। तिन सगली चिंत

खाना सूरत महला पंजवा ऐसे उठे रखवाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला ऐसे उठे रखवाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संवाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपिया नाम रमाणा सतगुर पूरे भाणा ता जपिया नाम रमाणा गोविंद कृपा धारी प्रभु राखी तैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई।

कृपा करे जिस प्राण पथ दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना दिखे ठगोरी लाती संग मिलाए ली।

कहो नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा। गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवे, उधरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरा आराधे, कारज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बस

निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल। सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे। ज्यों माता बाल लपटावे त्यों ज्ञानी नाम

संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपूरे

विरहो भुजंग मन बसे मन ना माने कोए आराम बिजोगी राब तो बिछड़िया होया योग ना मिला पता ते बिजोग दार पता ना मिला बिछड़िया होया योग मिला पता कर दे ते बिजोगी ना मतलब है बिछड़िया होया जिंदा मिला नहीं गुरु ने बाणी भी क्या किया।

मेरा मन तो बहुत बड़ा है। क्यों? इसलिए क्योंकि नैन रस नैन ने प्रभु दे मिलाप दा रस मान लिया। एक बार मान लिया जाए उसे एहसास ज्यादा पता लग गया प्रभु दे मिलाप का सुख की है ते विछोड़े का दुख की है। इसलिए हे गुरमुखियो आओ मिल बैठ के गुरु को एक बेनती करिए। सुने गुरु मिला देता आओ मिल बैठ के गुरु को बेनती करिए।

गुण परमात्मा है, गुण नाम है। जेड़े काम विच गुण ना होवे, नाम ना होवे, प्रभु की चेतनता प्रभु की ना हुक्म ना होवे, वो छड़ दे, वो अगन हो जाएगा। बस गलत गुण तो अगन विच ही अंतर, जिंदे विच गुण नहीं वो अगन है, ते जिंदे विच गुण है परमात्मा, जिंदे विच गुण है वो नाम है। ते गुरु आखदे ने जिंदे विच गुण नहीं वो अगन वाले काम छड़ दे।

देती हूँ निर्मल है। और निर्मल निर्मल सूचा है, वो निर्मल है पर मनुख की है। जब मैला मैलो हो जाए, मैला खाए फिर मैल बधाए, मैला चौका मैले खाए, मैला खाए फिर मैल बधाए। एक हर निर्मल हूं वो निर्मल है, वो मैले नू अपनी गल बकरी कि लै लवे। हां गल बकरी लैन लिये तैयार है पर पहला साफ करता है। मैले नू गल बकरी लैंदा तो साफ करके लैंदा। इसके लिए उन्हें गुरु की इन पहला मैल इनकी मैल ला दी गुरु की यह ड्यूटी। मेरी गल बकरी आना चाहता है इनकी मैल ला दे, वो अवगुणा की मैल ला दिता है। गुण बड़ी तक है ना, एक ने भरिया गुण कर धोवा। एक अवगुण हो मैं गुण नाल धो तो लव। अवगुण बहुते हूं इन्ने गुण मेरे को है नहीं कि मैं उस सारे अवगुण धो लव। इसलिए सतगुर गुणी निधान है, गुरु जरा अवगुणा तक जाना है उसके को गुण बहुते ने, इसलिए मेरे अवगुण धो सकता है। सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुण जाने। वो ऐसे गुणों के खजाने अवगुण धो तो दिता है, तो जो धो तो दिता है मनुख निर्मल हो जाता है, निर्मल परमात्मा के सामने पेश होता है। वो गल वकील लै लेंगे, यो विषय का मिलाप हो जाता है कि गुरु ने यह गलबाणी भी चाखी। तू लगे मिलना चाहना तो तेन अवगुण से गुण का भेद समझना पड़ेगा। वो कुछ कार जिंदे नाल मैल ना लगे वो कारी है। रब के मिलने लिए तेन कारी चाहिए है, भाव कर्म चाहिए। कर्मी आपको अपने के नेड़े कभी कर्म चाहिए तो तेन पता हो जे अवगुण ने रब की कारी नहीं, गुण ही रब की कारी। गुरु ने रहमत कर जो तू आखिया ना जी मैनू दसो मैं किवें मिला। मैं हर पर प्यारा दस पर मेरा हर मन मने ताकि उन्हों मिल के मेरा मन की भटकना खत्म हो जाए। गुरु ने आखिया आ मैं तेन कर्म समझा। गुरु ने रहमत करके मैनू एक कार बख्शी। वो कार की थी जो हरी दे कविता भाव गुण सन।

变起来的。你这个人这一块就求来的大神的，然后为什么要比起从这方面白老子家把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的把门关上的क्योंकि तू बन गया है, तू कुछ बन गया है। एक कौन है जी बच्चा है, एक कौन है जी जवान है। उनके कुल शक्ति है, उनके कुल कोमलता है, बुढ़ापा है, इनके कुल तजुर्बा है, कुछ है। तू हर कदम पे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके पीछे एक तेरी अपनी होंद खड़ी है, एक अपनी होंद खड़ी है। जे तू चंगियाई कर रहे हैं तब भी उनके पीछे जे तू पुण ते पाप दी विचार कर रहे हैं ना उनके पीछे भी एक तेरी होंद खड़ी है। मैं पुण करना है, मैं पाप छड़ना है, गलत चंगी है पर वो मैं नहीं है ना, मैं ते ना जुड़ गई। गुरु ने क्या किया, एक अपनी होंद जड़ी है ना, केवल अपनी होंद ही तेनू विछोड़े दा कारण बनी। ਉਹ ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।

मद किया, मद च जदों अपड़ जाएगा मद किया मस्ती, अंत किया खुआरी, अंत खुआरी। कहिंदे हन इधर नाम दे रस दा नशा, शुरुआत किया अलूणी सिल चटणी। शुरुआत विच इस तरह लगेगा क्योंकि साडा अंदर टैंपरेचर अपना नहीं ना ठीक, जिदे करके मिठा भी सानू कौड़ा लग रहा। बस जदों चखना शुरू कर देंगे ना, मेरा मालिक नाम की बरकत नाल साडा टैंपरेचर आपे बैलेंस कर देगा। नाम की यह बरकत है, नाम कर देंदा साडे टैंपरेचर नू ठीक। ज्यों ज्यों जपांगे सतसंगी नाल बन के, सतगुरु कहिंदे हन फिर ए रस ज्यों ज्यों चखिया फिर मिठा लगा। लग क्यों नहीं सी रहा, कारण की सी? असल विच जीवन च रस बहुत है। रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल रस मा, रस परमल रस वास। हां रस कोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास। ये वहीकल चंगे तो चंगे पुरातन समय च कोड़े ही सन ना, फिर मिठे तो मिठे पदार्थ, ये मास आदक, ये सारे साडे रस हन। सतगुरु कहिंदे हन एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। नाम कित्थे टिके? पहलो ते बंदा इयो पुछदा है, इयो पुछेगा नाम जपण दा फायदा की फायदा होवेगा कदी? वैसे हर मां, मैं ते कहिंदा बाबा फरीद जी वर्गी मां, जेड़ी मां कहिंदी बेटा नमाज पढ़िया कर, फरीद जी भी साडे वांगू पुछदे हन, कहिंदे मां पढ़ांगा की मिलेगा, नमाज पढ़ांगा की मिलेगा? मां कहिंदी है बेटा जे तू नमाज पढ़ेगा खुदावंद तेनू शक्कर दे देगा। पता सी बच्चा शुकीन है शक्कर दा, ना ही जुड़ गया उन्हां दे नां नाले, मशहूर हो गया, तखल्लस बन गया शक्करगंज। कहिंदे हन बेटा जे तू नाम जपेगा ना, नमाज करेगा, खुदा तेनू शक्कर दे देगा। वेखो शक्कर दे बहाने जोड़े आ, पर जदों नाम रस आ गया ना, कदी जंगल चो वापस आए सन, बंदगी इस तरह की, भावे के तत् कढ के बाद च अगे रख दिता, साडे जंगलों च पटकन की लोड़ नहीं, सिखा अंदरों पहचानी, रब तेरे अंदर है, बाहर पटकन की लोड़ नहीं, तत् कढ के रखे हन। ओही बाबा फरीद जी की मां गद गद हो गई, बेटा गरीबी बड़ी है घर च, मेरा पुत्र अज इन्ने चिर बाद आया है, जे किते खुदावंद ने मैनू एक पाइया शक्कर पाइया घ्यो दिता हुंदा ते मैं बेटे अपने नू घ्यो शक्कर खवाउंदी। बाबा फरीद जी कहिंदे हन मां ठीक है, जो तू कह रही तू अपने ढंग नाल ठीक कह रही है, क्योंकि शुरू तू इत्थों कीता, पर हुण फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। ये सारिया वस्तु मिठियां हन, मां हुण नाम वर्गा रस कितों नहीं मिलता, परमेश्वर दे नाम वर्गा रस। बस ये शुरुआत च इस तरह ही लगेगा, जोड़ना ही पवेगा, सानू हठ करना पवेगा। बस जुड़द्या जुड़द्या एक दिन रस, फिर सतगुरु कहिंदे हन हर रस मीठा मन मैं बूठा। जदों यह रस मिठा मन च वस गया, एक कदों वसेगा? सतगुर तुठे तुठा सहज पया, मेरे सतगुरु त्रुठणगे। जपद्या जपद्या त्रुठदे हन, अर्थ भाव कमाउंदिया कमाउंदिया बाणी, मेरे गुरु की बख्शिश भी नाल ही होनी शुरू हो जाती है। असी आनंद दुनिया के रसा चो लभने, उन्हां रसा नू छड्या नहीं, पर गुरमत दे चानण च कमाउणा भी है आपां। पर सच है मेरे सतगुरु ग्रिस्त दे विच जीवन कमाउंदिया ही चाहुंदे हन सिख नू आनंद प्राप्त हो जाए। हुण सतगुरु कहिंदे हन सतगुर तूठा सहज पया, गुरु त्रुठ पए, नाम वस गया, नाम जपद्या जपद्या नामी पुरशां नू सहज मिल जांदा है टका, अंदर दा टका। वैसे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बोल हन, रसना गुण गोपाल निद गायण। रसना नाल गाउणा शुरू कर, जपना शुरू कर,
शांत सहज रहस्य मन उपजियो सगले दूर।

तीर्थ नावण जाऊं तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द गया विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नावण जाऊं तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दास पुरब सदा दशहरा। हम नाम हर का सदा जांचौ, देह प्रभ धरणी धरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना। गुरवाख निर्मल सदा चाननो, नित साच तीर्थ मजना। साच न लागै मैल क्या मल धोइयै, गुण है हार परोई किस करोइयै। विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोन न आवै। आप पारसु परम त्यानी, साच साचे पावै। आन दे आनंद आन दिन हरख साचा, दुख गलविख पर हरी। सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाहीं सच मने।

शंख मूर्खांत घोर शंख चोर राम घोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गड़बड़ त्या कुमाहे असंख बापी बाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल बख खाहे असंख निंद

ज्ञान गीत गुणगान। अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सरसन जोग बखाण जिने लिखे तस सर नाही जय फरमाई दिवत पाए जेता कीता देता नाओ बण नावे नाही को थाओ कुदरत गवण कहां विचार बारा न जावा।

पायो जन जितिया मुखाई आपे जाने आपे दे आखे सिब गई के जिसनों बख्शे शिवदाला नानक बादशाह ही बादशाह।

कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांतता प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशेनंगं स्वरूपे अभंगं प्रभुते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी अनामे दृभंगी दृघामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सदर न मित्र न दाता न माता न जाता न पाते नरसाख श्री गा मितम ही गाय सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शांत प्रसाद। के जार जूर है कि हाजर है जूर है मिसल सलाम है समासल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उस नल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी रहन दें कि राज करहन दें गरीबल कमाल है कि उस नल जमाल है गनीवल खराज है गरीबल नवाज है हरीफल सिकन है रासल बिकन है कलंक प्रणास है समासल निवास है गंजल गनीम है रजाय करहीम है समासल जवाह है कि साहब गिराए कि नरक प्रणास है बहस तुल रवास है कि सरवल गवान है मीस तुल रवान है तमाम लोग तमीज है समाज तुल अजीज है परम परमीस है समाज तुल अधीस है दीसल लेख है मीस तुल पेख है जमीन जमा है मी गलमा है करीम कमाल है जरो जमाल है।

रूप भई नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नाथ इंद्र भूते।

एक अश्री चंद अजय अलय पैव पुवजू नास घास गंज भंजल कपक गल अलिक भेघ नाम काम गाट नाते परमाथे जोनि मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे कर्मग परमग गंज लेखे उजंग प्रयात छंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे गंजल नामे समास्तल निवासेन्द्र कामंग भूते समास्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग भूते सदा सचिदानंद सुधरंग प्रणाशी ग्रीमल करिंदा समास्तल निवासी अजायब भूते विजायब ग्रीम हरियं करियं ग्रीमल रहीम जदर जगर भारती जदर जगर भूते सुयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजोते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भुगते सुयं भव सु

ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पद अंत फसे जम पाज परेंगे जे नार सरी पद के प्रसाय पाग दे नार फिर न दे तरेंगे कहा पयो जो दुलोचन मूंद का बैठ रहे भगत ध्यान लगायो न हाथ फिर उलिए सात समुद्र लोग गए उपर लोग गवायो बास की ओर अंत बैठ गए ऐसे ही ऐसे वैस बतायो साज कहो सुन ले सब है जन प्रेम की हो जन ही ब्रह पायो गाहू लै महान बोई धरे सिर गाहू लै लिंग कर लटकायो गाहू लख वर वाची दिशा में को बतान को बुझद है बस को काहू लख वर हार वाची दिशा में गाहू बिछा

पूर्ण हो जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काब हो आप हाथ दे मोह बचाव सुखी बस है मोर परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा रज कर दे करे है सब बैरन का वास करे है पूर्ण होए हमारी आशा दौर भजन की राय प्यासा तुम छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो भर जाऊं सदम दे पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है जन चन सत्र हमारे मारी है

पाया। सुवर्ण नारायण जाने अमृत खोज दे अमृत गुर दे पाया पाया अमृत गुर कृपा गिनी सच्चा मन वसाया जी जन सब दुद पाए कवेख पर सुने आया। लभ लोभ अहंकार जुगा सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनों आप दुठा जने अमृत गुर दे पाया।

गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जांचो देह प्रभ तरणी तरा।

आप पारस परस ध्यान आप पारस परम ध्यान साच साचे पावे आनंद अनदन हरख साचा दुख कल पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मल नाही खिनवाने सच नाम ते आया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत में लाभ पूरा नावणो गावे गावण हार शब्द सुहावणो सालाह साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सह समावे बिणीता संग मसत सचे फिर संग पावे सहज नावे बिणीता संग मसत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कार नजर मेल मिलाया कहन कहे सब कोई के बड़े आखी है

नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाव नानक।

मुसलमाना सिर्फ शरीर पढ़ पढ़ करे विचार बंदे ते जे पवच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सलाह दर्शन रूप अपार।

0: तू सच्चा सब सवाले जिन की सो पार पया कौन आण करते किया बाता जो कर जो कुछ करना सो कर महला दूजा
1: जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दम सूर शब्दम सूदर शब्दम प्राकृत
0: सर्व शब्दम एक शब्दम देखो जाने पे नानक ता का दास है सोई।

कूड़ीरा कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार शर्म तर्म का डेरा दूर शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तिड़ धोती क खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्राण मलेस्तान ले पूजे पुराण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़िया।

जेकर सुतक मनी है सब ते सुत को होय, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होय, जेते दाने अनके जिया बाज ना कोय, पहला पानी जी

मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक को अखी सूतक वेखना परत्रय परतन रूप कन्नी सूतकन पहला इतवारी खे नानक संसा आदमी बदे जमपुर जाहे सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना।

0: पाए। नानके की बारी और दूजी नहीं जाए, सो करे जित सिर जाए, सो करे जित सिर जाए।
1: वडा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर चाहं पातशाह नेचल चौर तत वड्डी हु वड्डा अपार।

0: नाम सत है तेरी वाहे गुरु।
1: औड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंगा ने एक ना जापन करतबा, जी अंदर जियो सबके जान ला, सबके तेरे वास तेरा करपला, तेरे कारण बधाई तुद कर मान मत्ता, तेज अपना आप जर सर्व कला।

नाम अमोल अस्पदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत विज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खन प्रीतमी फिरे चिर जीवे महा उदास तपीसर थीवे अग्र माहे होमत पराम अनक असव है भरपूर दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हम मैल ना जावे हर के नाम संसार कठ नाही नानक गुरमुख नाम जपत घट पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमान ना मन ते हुटे सोच करे दिन से अर रात मन की मैल ना तन ते जा इस दे को बहु साधना करे मन ते कबू न बिकिया ठरे जल धोवे बहु देह अनीत शुद्ध कहां हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत स्यान पजम का पहु व्याप अनक दत्न कर त्रिशन ना तापे एक अनेक अगन नहीं बुझे कूट उपाल दृगे नहीं सिजे छूट नाही ऊप पयाल मोहे व्याप माया जाल अवर करतूत अगली जमदान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मन हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लूरे साध संग ए हम मैं छूरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को सब दर्श प्यासा नानक ता कह बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान साध संग जाका मिटे अभमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मटाना देखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर तन को तन तेरो नाओ नतामे को नाओ तेरा थाओ नमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान करन करावन हार स्वामी अगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुनरस बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कटवस्ते हर नाम श्लोक।

साध के संग अजय सभ्याप आपे दान है सार बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कभू पावे साध के संग सरा सुख पावे साध संग भक्त अगोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम ननान नानक साधु के कुर्बान साध के संग संकुल उधारे साध संग साजर मीर कुटम निस्तारे साधु के संग सो तन पावे जिस तन ते सबको वसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सुभ असुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलूख तहरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा उहा सहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा है सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे सार के संग सुनो हर नाव सार संग हर के गुण गाव सार के संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग काट काट दीठा साध संग पे अज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पीटे संयोग सार की नाम वेद न जान है जेता सुन है ते ताब ख्यान है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच से ऊंची साध की शोभा मूच से मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु भेद न पाई श्लोक मन सच्चा मुख सच्चा सोए अवर न पेख एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अश्वरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कद समान जैसे राज रंग को लगे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीर देख ज्यो वसुधा को खुद को चंद्र लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लगे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रकाश जैसे तरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाय अभमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस्त ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कार सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बर जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सरा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाख ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुख बधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक पुरतार जो अंतर नाम सर्व में पिक है भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कार है नानको परस सर निस्तार अष्टपदी मिथ्या राही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार तेरे रूप ना पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे मन की बस न मन ते तरे इंद्री जित पंच दुख ते रहत नारक कोट मध्य को ऐसा अपस वैष्णो सो जिसु परसो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए पिन कर्म करत हो निकर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन तै सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे किस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमत बुझे मूल सूखम में जाने अस्तूर तहवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सब को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे फस्त प्रेर मुग्ध पात्र को तारे सर्व रूप का औकल नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कित न पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुरकर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदी आया दार संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे किस दास को सब सूझी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हतावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हर्क तैसा उस सोग सदा आनंद तैना ही ब्योग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी भिख खाटी ऐसा मान तैसा अभमान तैसा रंक तैसा राजान दो वर्ताए साई जुगत नानको पुरख कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित कर राखे तैसा तिन नाव आपे करन करामन योग प्रभ पावे सोई फुन होग असरो आप हुए अंत तरंग लके न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल सलोक पुस्तक करें अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृत्ति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैती त्वासी कई कोट मन परमय उदासी कई कोट बेर के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पाव है कई कोट पये अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व कोहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्माए कई कोट पर देश परमाए जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध गति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सत्य सूर नखियतर कई कोट देव दान इंद्र शिरछतर सगल समग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच सब ते निरह सब हूँ ते दूर नानक आप अलिप्त रहे अपरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर है कई कोट भव जो नित्य है कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काल थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत जहाँ जहाँ पाना तहाँ तहाँ राखी
नानक सब किस प्रभु कह हाते। कई कोट भये वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिनको मिलियो प्रभु अविनाश। कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभते हुए ब्रह्मा हिस्मात। काका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होत आत्म प्रगास। कई कोट तत के बेटे, सदा रिहार है एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे, अमर पय सद सद ही जीव। कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को सास सास तुम्हारे, नानक पे परमेश्वर के प्यारी। सलोक करन कारण प्रवेक है, दूसर नाही कोए। नानक तिस बलिहार ने, जल थल मैल सोए। अष्टपदी करन कराम कन्ने जोग, जो तिस पावे सोई होग। खिन में ताप ताप नहारा, अंत नहीं किस पार आवारा। हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अंक रंग प्रकार। कर कर दिखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहया समाई। प्रभ पावे मनुख गत पावे, प्रभ पावे ता पात्र त्रावे। सब पावे बिन सास्ते रखे, सब पावे ता हर गुण पाखे। प्रभ पावे ता पत उदारे, आप करे आपन विचारे। दुहां सिनिया का आप स्वामी, खिले बिजते अंतर जामी। जो पावे सुकार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कऊ मनुख ते क्या हो आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ हुए ता सब किसले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत बिख्या मेहरचे, ये जानत अपने आप बचे। परमे भूला दैत सतावे, निमक माहे चार कुंट फिर आवे। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। हिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जा का दृष्ट कछु न आवे, ते सत्काल दै दिस प्रगटावे। जा को अपनी करे बख्शीस, ताका लिखा न गने जगदीश। जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनत आप मनाई, नानक जी है देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, करन कराम न सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो। कबहू ऊंच नीच मैं बसे, कबहू सोग हर खरंग हसे। कबहू

क्रोध विकराल, कबहू सब केहो तरवाल, कबहू होए बह बड राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तत तीर्थ इकनान, कबहू सिद साधक मुख ज्ञान, कबहू कीत हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, जो प्रपावे तवै निचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत ए पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं बनास, मन तन नाम रत्ते इक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, जो जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप नवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गड़े अष्टपदी, जिसका अंतर राज बमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिस्ता का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जून प्रमावे, तान पूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, का कृपा जिसका हृदय गिरीबी बसावे, नानक यहा मुक्त आज्ञा सुख पावे, तनवंता हुए कर गिरबावे, तृण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस, बल पीतृता का हुए बनास, सब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पतमंत, किते न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह प्रवान, कोट कर्म करे हो तारे, शर्म पावे सगले बिथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, अनक यत्न कर आत्म नहीं धरवे, हर दरगाह कहो कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे, जिसे पलाई निक ना आवे, सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझे कष्ट होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं कि करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लक को उठता आवे, तृप्तना आवे माया पाचे पावे, अनक भोग भिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरते सब काज, नाम रंग सब सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन कराम ने आपते आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन कराम करने हार, इसका हाथ कहां विचार, जैसी दृढ़ करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किस किनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग, बुझे देख करे विवेक, आपह एक आपह अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नारक सद ही रहे समाए, आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब कै साथ, आप किन्नो आपन विस्तार, सब कछ उसकाओ करने हार, उसके पिन कहो किस होए, थान तनंतर एक ऐसोए, अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन में आप माने अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने बखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी।

रूप नरेख नारंग केस एह गुण ते प्रभ भिन्न किसै बजाए नानका जितो ऐसो प्रसन्न परि अविनाशी ब्रह्मन में राग मानुख की तुम प्रीत त्याग किसते परे नाही किस होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन के अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया तो होग हरन परन जाकर नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अंध रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए हर तक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मेत नाए सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन

अब एक करे एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाश की एक अंकार नाना चलत करे छिमाही पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद करबंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल अकार नाम के तारे पुरिया सपन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रभका सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोए नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट तो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पहि बिस्माद जिन बूझिया तसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जम रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे होए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेक सुवड़ भागी जन

මෙත ඥාන දිනස සම්දිහා සුන අපදේස සිද්දබ් සාහු මන ඉච්ඡේ නානක ඵලපාව හල්ත පල්ත දොයලි හොසවාර රාම නාම අන්තර පුරතාර පූරේ ගුති පූරේ දීඛයා ජිස්මන මස්ත තිස්සාච් පරීඛයා මන්තන නාම ජපෝ ලිවලායි දුක් දර්ද මන්තේ පොහොජායි සච්ච වපාර කරෝ වාපාරි දග්ගෑ නිබහ කිප් තමාරි එක්කා ඒක රකෝ මනමායි නානක බවරනා ආවැ ජායි චිත්තේ දුර් කහ को जाय उबरा रख महारते आय निरपौ जप सगल पौ मिटे प्रभ कृपा ति प्राणी छुटे जिस प्रभ राख तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटे अंकार तिस जन को कोई ना पहुंचन हार सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तान सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसत सो होत निहाल आंकै निकट न आवत काल अमर पै अमरा पर पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुदिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत पीटिया नानक मन प्रगास अस्पदी संत संग अंतर प्रवरीता नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समार अनंत तैनात कहना जाई चर्ज विस्मार तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिन जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सब लोक पूर्ण प्रतिपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा क्रम पौन पानी व्यसम तर माहे चार कुंट दैर्य से समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत में देख सतियर सूर नक्षत्र में एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कब हूँ डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाइय गुण है अमोल सब ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में ए बसास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत दो जो होए सोई सुख मन करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनक कला लखी नैंडाय जिस भावे तिस लय मलाय कवन निकट कवन कही दूर आपे आप भरपूर अंतरगत से आप जनाए नानक तिस जन आप जाए सर्व पूत आप वतारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तन अपन जस आप ही सुना आमन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की माया सब कह मत लिपतो रह जो किश कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इस दे हुए सुना ही बुरा कहू किने कच करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जान है अपने जी की आप साच तारी सर साच पोत पोत आपन संगराच ताकि जातमित कहीं न जाए दूसर होए तासो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसार नानक के जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मलाए ले तब सोए धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जाने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया।

पूरा प्रभ आराध्या पूरा जग का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ परि पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक सास सास सिमरहु गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना के तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुरु गोविंद अमृत रस पियो चित चितव हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक सार के बचन अमली कलाल ए रतन संत कुमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफल का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुनो अंधकरे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक द्रे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मलाए मिट गए बैर भई सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भई गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आज जाल बकारते रहते राम नाम सुनस न कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभे खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसते सोहो तिन दान सब इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न होए आवन जान हर तनखा चले जन सोए नानक जितै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तप का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पणे गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ता की गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते दम ते छुटै जाके मस्तक

0: केलबोदी रंगीली तहसील दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.300 सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

प्रलोक सभी सुधरे हर भगत परापत हुए थे हैं। दास गोविंद फतेह सतगुर की अस प्रभ शोध अवर कट जई है। जेता जियो

और मैं कौन और तो किसी किनारे में पार में निश्चित किया जा सकता ऐसे जीवन के दो किनारे मन के पार निश्चित कर लिया तो ऐसी समझ गया उड़ार है जीवन का आरंभ पार है मौत के पीड़ा तो अगे बढ़ना समय बल्कि किसी ख्याल करो पार किसी किनारे को निश्चित नहीं किया जा सकता पार केवल साड़ी पहुंच पे सीमित है जिथे असी खलोते हैं कोई आखे पार की है यो दूजे किनारे वाला हाथ कर देगा आखी का वह पार है असं इस किनारे से खलोते साडे लिए वो पार है ते जे भला कोई उस पास से खलोता हो जिन्हों असी पार आखना है ये भला उस किनारे कोई खलोता हो पहुंच उधर होते कोई पुछे पार के रहे और साढ़े किनारे वाल जिन्हों असी उड़ार आख रहे सब हद कर देगा तो आखेगा वह पार इन्हें मतलब किनारा कोई पार नहीं कोई किनारा पार नहीं किसी किनारे को पार नहीं आख्या जा सकता साड़ी पहुंच तो सीमित है असी कितने खलोते हैं दूजा किनारा पार है बाय निश्चित है जीवन ते मौत जन्म ते मौत दो किनारे ने जिंदे दरमियान विच दुनिया का हर जीव किरिया होया है हम देखना यह कि पहुंच किस किनारे ते किस किनारे जिथे इनकी पहुंच है वह इसका उड़ार है जिथे भी पहुंच नहीं वो पार है जिथे इसकी पहुंच है उथे इनका जीवन है जिथे इनकी पहुंच नहीं उथे इनकी मौत है उसमें ऐसा कोई मनुख महाबलवान हो जिनकी दोनों पासे पहुंच हो ख्याल करो कुछ बलवान लोग ने जिन्होंने तरना आता है कुछ बलवान लोग ने जिन्हों का दरमियान का वहन कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेहरबानी की आख्या कह लगी

बस क्योंकि किसी की पहुंच नहीं हुई इसलिए वो किनारा पारला बने हुए है। किसी की पहुंच नहीं हुई इसलिए वो मौत बनी हुई है। दुनिया के लोग मौत तो डर रहे हैं। गुरु ने बाणी में भी आखिरता जग मरन ना भाया। संसार के लोगों मौत चंगी नहीं लगी क्योंकि पारला किनारा जो है वो पलिया बल तुरे अपने बाजुआ में कोई नहीं पारला किनारा आखी जाने गुरु ने बाणी तक है कहने लगे जग मरन ना भाया नित आप लुकाया हमेशा अपने आप लुकाउंदा फिर कितने मौत ना आ जाए क्योंकि मौत में इनू आनंद नहीं दिसदा पारला किनारे जिन्हें ने मौत तक पहुंच पैदा कर ली आज जो दिन चल रहे ने आज जिन्हें दिहाड़े में लंघ रहे हो तो दिहाड़े करीब करीब सारे ऐसे तहसन नाल संबंधित गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी भाई मतीदास की शहीदी सतीदास की शहीदी भाई दयाले की शहीदी छोटे साहबजादे की शहीदी बड़े साहबजादे की शहीदी माता गुजरी की शहीदी कैसे बड़ी उन्होंने लोगों के जीवन के दिहाड़े ने जिन्होंने मौत को पा लिया समझ लिया हूँ मौत भी उन्होंने जीवन बन गई हूँ इसलिए बाणी ख्याल देता कहने लगे जेडे लोग केवल शरीर तक जीते ने ना दुनिया के शरीर के दिसन वाले पदार्थों में ही अपना जीवन समझते हैं समझ लो वो जरूर मर जाते जरूर क्योंकि दिसन वाली चीज खत्म होनी वो शरीर भी दिसता है पदार्थ भी दिसते महालमारियां भी दिसदिया ने सुखों के आराम के साधन भी दिसते हैं दौलत के अंबार बैंक बैलेंस भी दिसते हैं ये जिन्हिया चीजा दिसन वाली ने ना वो सारिया दिसदिया ने गुरु बाई तक कहने लगी।

आश्रित हो जाए। ता एक अवस्था निकलेगी मरण जीवन जो सम कर जाने क्योंकि तो दो किनारे तो निपोत हो गई हम जीवन के मौजूद जरा बखेरा दुनिया का हार मनुख समझता है उस मनुख की सोच वक्री हो जाती है। इसलिए श्री गुरु साहब की बाणी में बाबा कबीर जी ने एक शब्द अंदर दुनिया की कहानी से उन्होंने कहानी वक् वक् कर दिता है। पहले कह लगे मैं दुनिया की कहानी दसना चाहना ऐसो वे संसार देखना रहन ना को पई है रे दुनिया की कहानी इस संसार की कहानी ऐसो ए संसार देखना रहन ना को पई है रे सुधे सुधे रेग चलो तुम नतवक हटा दवैया रे बारे बूबरे तरने भैया सब हू जम ले गई है रे मानस बपरा मूसा किन्नो नींद बलैया खैया रे धनवंता और निर्धन मनी तांति कछु ना कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे कोई अपनी दौलत नाल अपनी सियासी पराजीतक शक्ति नाल संसार की किसी अदालत तो बेगुना अपने आप को साबित कर सकता है। अज मैं संसार की देखता है हर पास करप्शन है जुलम है बेइंसाफी है अन्याय है पर वो बेइंसाफी से अन्याय केवल राज शक्ति नाल से अपनी ताकत के बलबूते अपनी दौलत की शक्ति नाल दबाया जा रहा है। पर गुरु कहते ने ख्याल करी तेरी ये दौलत तेरी राज शक्ति की जितनी मर्जी वड्डी पदवी होवे मौत के सामने तू अपनी किसी शक्ति नाल बचा नहीं कर सकता। हां तू मौत तक पहुंच करके मौत नु जीवन विच बदल सकता ताकि तू मौत तो बच जाए। आपने देखो जाएगा छह जो मरे अमर हो सोई पर कहने लगे एक ख्याल करी और जिन्हों मौत नू तू जीवन विच बदलना चाहना है उनके लिए जरूरी है कि तेनू आप मरना पड़ेगा डर खत्म हो जाएगा ना जिहड़ा काम किया नहीं वैसे तू गई है जिनी देर मनुख मरदा नहीं उन्नी देर मौत तो डर है क्योंकि उस दरवाजे लंघे ही नहीं जिसने मौत लई अपने आप नू प्रिपेयर कर लिया जिनने मौत लई अपने आप नू तैयार कर लिया विश्वास करो जिस दिन उनकी तैयारी हो गई उस दिन मौत उनके कोल डरेगी। बाबा कबीर जी ने भी गल कहने लगे